0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: कुनै प्रकारको रसायन केमिकल नमिसाइएको शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्यश्री चितवनको अत्याधुनिक मिलमा उत्पादित शुद्ध तोरीको तेल स्वास्थ्यश्री रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेडका प्रिमियम उत्पादनहरू।
1: बाबु ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
2: मैं नहीं जाइस, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
1: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई लो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
2: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए।
3: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालू खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
4: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98600 71024 ओ 98046 77417।

0: ता ले लीते
1: एंसल पैक किन लीते
2: जहिया फेन जहाँ फेन पैक खरीद करी 25% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश फिर ता ले लीते कैश फिर ता ले लीते
2: एंसल पैक किन लीते शर्त लागू हुई एंसल नेपाल के लग।

0: फुका पिए रही था कभी पेंसिल ले रही था कभी झोले फटाका आजी था का कना हो का कना हो बाबा फिर उस टपाटीन गटीलो ठाउं से झोला आनले से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर भर थी राहत
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कही था कभी पेंसिल हेरा कही था कभी झोले फटाका कही था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गया झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गुर झोला आन लबाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का आनल झोला दस काटस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रट गया झोला उद्योग में रट गया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकला झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: भन्दै सबै कुरा पाउने रहेछ लु भन् त भाउ के पाउँछ त्यहाँ
4: ए त्यहाँ त्यहाँ छ नलका मोटर ढक तराजु घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ
5: ए एभ्रिलाको कुरा गरेको हो त्यो त मलाई पनि थाहा छ त्यहाँ त ग्यास ग्यास चुला नलकाका सामान किला काँटा सबै पाइन्छ नि
6: त्यति मात्र होइन त्यहाँ त जस्मिन पेन्ट घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ
3: भन्दै सबै कुरा पाउने रहेछ
7: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतौल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रिला ट्रेडर्स
8: विशेष ढक तराजु डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रिला ट्रेडर्स
9: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर
7: प्रोप्राइटर पुष्पराज देवकोटा सम्पर्क फोन नम्बर 98484463673 र 98164602204
10: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दैछौ छोरी
11: आमा मलाई सिक्री बनाइदिनुहोस् न लाउन कस्तो रहर लाछ
10: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले
11: मेरो खुतुर्के छ नि आमा मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु फेरि सुन त पछि पनि काम लाउन सक्यो नि
10: कुरा राम्रै हो छोरी तर कसकोमा जाने हो त
11: न्यू असम जाल्पा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ अस्ति नै हेरिसके मैले त
7: न्यू असम जाल्पा देवी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चोक टिकापुर न्यू अछाम जाल्पा देवी ज्वेलर्समा नयाँ नयाँ डिजाइनका विभिन्न गर गहनाहरू माइली तिलहरी हार झुम्का छड्के तिलहरी बाला चुरा चन्द्रमा जन्तर चन्द्रहार इन्डियन मंगलसूत्र औठी सिक्री बिनारसनका गर गहनाहरू पाइन्छन् साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन् अछाम मंगलसैनको शाखा टिकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार फोन नम्बर 98684149 98246352 अछाम मंगलसैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार गोपाल सुनार फोन नम्बर 98246728225

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के सन्देश 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपने स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संग अनलाइन में www.टीकापुर fm.org मोबाइल एप हमारा पात्र नेपाली पात्र मफे सुनती रहलबाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से विद्यालय में धमाधम विद्यालय सुधारे जना निर्माण करती नेपाल मानव उत्थान के पांचौ अधिवेशन प्रतिनिधि सभा में 3 विधेयक प्रस्तुत उप प्रधानमंत्री संग चीन के राजदूत के शिष्टाचार भेट वार्ता संपन्न। विद्यालय सुधार योजना कलक विद्यालय में आगामी दिन में कुन अवस्थासम्म पुगेन कना बाटके समग्र योजना बनल बा। विद्यालय सुधार योजना अबके दिन में सिकाई उपलब्धि कायसम्म पुगेन। विद्यालय के भौतिक अवस्था कसिन बनेन। विद्यालय में एक सुविधा सम्पन्न विद्यालय बनाएका का क्रियाकलाप संचालन कर्नाकी एक समग्र योजना हुलक। विद्यालय अभिभावक विद्यार्थी शिक्षक सरकारवाला पक्ष बोलाकी विद्यालय में कार्यशाला गोष्ठी के आयोजना करके कार्यक्रम आखा बढ़िलक कालिका आधारभूत विद्यालय के प्रधानाध्यापक जोगी रावल बटिलो विद्यालय सुधार योजना आपना शैक्षिक पक्ष में बढ़ी जोड़ दिलको विगत के वर्ष में अभिभावक विद्यार्थी अन्य सरकारवाला पक्ष में से अलग सुझाव होकर विद्यालय सुधार योजना जोड़ के ढेर सिंह पक्ष में से विद्यालय के अवस्था सुधार करना करके विद्यालय सुधार योजना निर्माण करना अलग अलग खड़क स्मृति मावी टीकापुर के प्रधानाध्यापक जनकराज ओझा बटिलो वस्तनगर के विद्यालय सुधार योजना निर्माण के क्रम अलग जनजागृति मावी सीतापुर के प्रधानाध्यापक मुक्त प्रसाद भंडारी के अनुसार विद्यालय के विद्यार्थी शिक्षक अभिभावक अन्य सरकारवाला पक्ष बीच छलफल करके प्राप्त सुझाव सहित समावेश करके विद्यालय के आगामी योजना निर्माण करती कलकट ओ महाआवक दिन में विद्यालय के शैक्षिक भौतिक अवस्था कसिन बनाक के बाट प्रस्त देखना कलक वहां बोटिलो विद्यालय सुधार योजना कलक मजा विद्यालय मजा शिक्षण और मजा सिकाई हुलक उद्देश्य निर्माण करना दस्तावेज हो। योजना की विद्यालय की शैक्षिक भौतिक प्रशासनिक कार्यालय हाँ चुस्त बनैना। विद्यालय सुधार योजना विद्यालय के पथमार्ग हो कैके टीकापुर नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख नरेश अवस्थी वहां के अनुसार विद्यालय के अवस्था के पहचान करके वहां समेत विद्यालय सुधार योजना समेट पर्ना बोटिलो। नेपाल मानव उत्थान समाज टीकापुर के पांचौ अधिवेशन के काशीराम ढुंगाना के अध्यक्षता में नया कार्य समिति चयन कलबाट समिति के उपाध्यक्ष में तारा साउत सचिव में शारदा सोडारी सहसचिव मधु अधिकारी कोषाध्यक्ष में नेहा थापा चैनहिलबाट कार्य समिति के बारे में जानकारी देना हुटी नया अध्यक्ष काशीराम ढुंगाना बुटिलोबाट। सोमवार हुलक साधारण सभा में संस्था के निवर्तमान अध्यक्ष बलबहादुर रावल मानव सेवा के लाग स्थापना हुलक संस्था हे इन स्याघ टीकापुर जानकी जोशीपुर लगायत के क्षेत्र में ध्वजसिंह कार्यक्रम कलशफी कोविड हेयर शिथिल हुलक को नया कार्य समिति संस्था के उद्देश्य अनुसार के काम करना अपेक्षा व्यक्त कलबाट। खोज खबर में घड़ी विश्राम विश्राम पास फिर से विश्वतिर विश्वामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: आज तिमी मेरो वरीपरी किन घुम्दैछौ छोरी?
2: आमा मलाई सिक्री बनाइदिनुस् न, लाउन कस्तो रहर लाछ।
1: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी, फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले।
2: मेरो खुत्रके छ नि आमा, मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु, फेरि सुन त पछि पनि काम लाउन सकियो नि।
1: कुरा राम्रै हो छोरी, तर कसकोमा जाने हो त?
2: न्यू असम जालपा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ, अस्ति नै हेरिसके मैले त।
3: न्यू असम जालपा देवी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चोक टीकापुर। न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्स मा नया नया डिजाइन का विभिन्न गर गहनाहरू, माइली तिलहरी, हार, झुमका, छड्के तिलहरी, बाला, चूरा, चन्द्रमा, जन्तर, चन्द्रहार, इन्डियन मंगलसूत्र, औठी, सिक्री, बिनारसन का गर गहनाहरू पाइन्छन्। साथै चाँदी का सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन्। अछाम मंगल सैनको शाखा टीकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ। प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार, फोन नम्बर 98688147979, 98247025। अछाम मंगल सैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार, गोपाल सुनार, फोन नम्बर 98247628225।
4: के तपाईलाई थाहा छ,
5: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ।
3: फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
0: हो र
3: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
0: अनि
3: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
0: के छ त विकल्प?
3: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं।
0: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
3: अहँ, हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
0: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
3: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
5: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टिकापुरमा।
6: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
5: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
6: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
5: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
6: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
5: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
6: ईसीजी सेवा,
5: डिजिटल एक्सरे सेवा
6: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
5: फोन नम्बर 9844-27359 र 9848-72-59। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै।
0: प्रतिनिधि सभाकी आजकै बैठकमा धेरैसिन तीनठो विधेयक प्रस्तुत कलबाट बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर सोनी मोगले कर्मचारी संचय कोष 9 संशोधन विधेयक 2083 प्रस्तुत कलबाट विधेयक प्रस्तुत गति उहाँके कोषके 2019 साल के एन कार्यान्वयनमा अलग बोटैटी समसामयिक संशोधनका आवश्यक हुलक यही विधेयक प्रस्तुत कलक जानकारी देलबाट। वस्तुनगरके कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सविता गौतम मेल मिलाप सम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक 2083 प्रस्तुत कलबाट उहाँ विधेयक प्रस्तुत गर्दै 2068 साल जारी हुलक एन संशोधन कनाओ हालिसेहाली न्याय निरूपण केला विधेयक लन्ला जानकारी कलबाट। बैठकमा युवा श्रम तथा रोजगारी मन्त्री रामजी यादव बालश्रम निषेध तथा नियमित करना विधेयक 2083 प्रस्तुत कलबाट विधेयक प्रस्तुत गर्दै उहाँ बालबालिका के जोखिमपूर्ण काम मलगना निषेध करना प्रचलित कानून नियमितो नियमन करना बनैना विधेयक लनक सदन जानकारी कलबाट प्रतिनिधि सभा बैठक जारी बा। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग नेपाल केलाग जनवादी गणतन्त्र चीनके राजदूत झाङ माओमिङ शिष्टाचार भेटवार्ता कलबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदके कार्यालय सिंहदरबारमा उहाँकनके बीच भेटवार्ता हिल्बा। भेटवार्ताके क्रममा नेपाल चीन सम्बन्ध थप सुदृढ बनिना धेरैसिन क्षेत्रमा सहयोग प्रवर्धन एवं विकास साझेदारी अभिवृद्धि गर्न लगायतकै विषयमा छलफल हुँदा भेटमा प्रधानमन्त्री शाहके चीनसँगके ऐतिहासिक सम्बन्ध अभिन्न प्रगाढ बनाइना साझा हितकै क्षेत्रमा मिल्के काम गर पर्ना विषयमा जोड़ देलबाट राजदूत माओमिङ फे प्रधानमन्त्री ज्यूह शुभकामना व्यक्त गर्दै दुई देश बीचकै आपसी सम्बन्ध हो सहकार्य थप सुदृढ बनिन प्रतिबद्धता जनेलबाट। खोज खबरमा फेरि विश्राम विश्राम पाछ फेरि बीच सुन्तिर सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
7: आइ हो बड्डो घर कहिया सिज्जैब पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जार सेक्ल।
8: अरे का करुरी बुढिया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू। मिल्बो मिल्बो निकरत का कैन हो का
7: मिस्तरान वर्जन औकन घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैला बाट अल्युमिनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्टफे पटानी हुइन कि गोंगुआ बुढो हो ना कबु कहुर घुम जाए त था पाए।
9: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
10: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848-5143-26।
11: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
0: भदौ 6 गते पहिलो शनिबारका दिन आउने भएकाले
11: समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा, सोब्रियासिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोगको समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
0: डाक्टर आउने दिन भदौ 6 गते पहिलो शनिबार
11: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर एक कैलाली। सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825677772।
12: के तपाईँलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
0: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हटब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन र्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफद मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588008।
13: विश्राम पाछा फेरि स्वागत बा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष मुस्लिम आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नबाट राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित एक कार्यक्रमकी बीच आयोगकी माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष महाबुद्दीन अली आयोगकी आर्थिक वर्ष 2082-83 के वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नबाट नेपालकी संविधानकी धारा 294 संवैधानिक आयोगकी वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न व्यवस्था रहलबा। अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलकी आयोगकी सम्पूर्ण मुस्लिम समुदायकी हकहित संरक्षण तथा मुस्लिम समुदायकी सशक्तिकरणकी सम्बन्धमा संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुलक नैहुलक विषय अध्ययन गरी नेपाल सरकारमा सुझाव दिन काम मार्फत संविधान सुनिश्चित करलक समान अवसर र सामाजिक न्याय तथा सम्मानजनक सहभागिता के कार्यान्वयनमा विशेष योगदान पुगेलक उल्लेख गर्नबाट यी समाचार संखोज खबरवाले जनासी पहिले खबरको मुख्य शीर्षक फेर्से एकचो धेरैमा धमाधम विद्यालय सुधार योजना निर्माण गरेदी नेपाल मानव उत्थानकै 5 अधिवेशन प्रतिनिधि सभामा 3 विधेयक प्रस्तुत ओ प्रधानमन्त्री संग चीनकै राजदूतकै शिष्टाचार भेटवार्ता सम्पन्न गीता बुकला खोज खबरत रह प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद गीता बुकला खोज खबर से मिस्टर चौधरी विदाई दू एक पास 6 बजे के खोज खबर सुन सकबी सामुदायिक रेडियो टीका पर सुनती रही।

0: लिटे सर लागू हुई एंसेल नेपाल के लग
1: आई हो बड्डो घर कहिया सिर जाइब पाछा से शुरू करल मने घर सिजार सेकल
2: अरे का करू री बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बातू मिलबो नहीं करत का कहना हो का
1: मिस्तरान बर्जन का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनेला बात अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे वस्त बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए
3: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो काम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषत हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
2: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541426
4: टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार र बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली
2: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला टेन्सनमा भए म त अब
1: भाइलाई थाहै रहेनछ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रेक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि
2: ए यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
1: कहाँ हुनु भाइ टिकापुर जमरा पारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
5: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
2: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
6: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल ट्र्याक्टर बस ट्रक टिप्पर जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरा पारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
1: सम्पर्क नम्बर 0915604670 र मोबाइल नम्बर 9848571828
7: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज
8: ए रुम गाउँको ठिटो

0: श्रोताहरू, कार्यक्रम बदलिएको जीवनशैली तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? अधिक जानकारीको लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ TWR नेपाल, जीपीओ बक्स नम्बर 8975, ईपीसी नम्बर 2561, काठमाडौँ नेपाल। साथै हामीलाई तपाईँले फेसबुक, युट्युब, टिकटक र व्हाट्सएपमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई एसएमएस तथा फोन कलको लागि हाम्रो नम्बर रहेको छ 9813300690। थप जानकारीको लागि हाम्रो वेबसाइट www.twrnepal.com मा लगइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
1: टिकापुर साना सहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको 10 वार्षिक साधारण सभा हुने बारेको सूचना।
2: टिकापुर साना सहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको 10 वार्षिक साधारण सभा भदौ 6 गते शनिबारका दिन तपसिलको स्थान र समयमा हुने भएकोले सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरू उपभोक्ताहरूलाई उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ।
1: साधारण सभा हुने स्थान टिकापुर योगा आश्रमको हल, ब्लक नम्बर 18, समय बिहान 11 बजे।
2: टिकापुर साना सहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था टिकापुर कैलाली, फोन नम्बर 091-560-892।
3: बुढल्ला सुन्टो कि नै वहाँ नन्दी भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनेना पट्टा नि पैना त
4: अधि गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
3: तुहार बाटस तरह तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका अनसे के कत्रा सुगर बनाकन ल बाटी
4: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाइ औ जाइका हु सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
3: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फे बना जाए मोबाइल नंबर 98684-41208 ओ 98486-39261।
5: कार्यक्रम छोट मीट साता के बुधवार दिन के 1 बजे से अपने उगन थारू भाषा के कोई गीत मन परत
6: जब देखनो तुहिन है
5: यदि मन परत हुई कल से अपन मन सुनेना चाहती कल से हमन फोन करी और कही महीन ई गीत मन परत गीत के बोल बताई गीत मन परना के दुई ठो कारण वो गीत कौन एल्बम के हो या फिल्म के नाम बताई और अंतिम में एक जन के नाम अनिवार्य ले दी कल से हमारे गीत अपने पक्के से सुना तो उठाई मोबाइल और डायल कर भी 091-561-255 साता के बुधवार दिन के 1 बजे जरूर डायल करे हुई कार्यक्रम छोट मीट में केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 मेगाहर्ट्ज में सुने ना बिस्तरी मई कार्यक्रम संचालक रमेश मिशन के साथ में

0: क्या ले लीते
1: एंसल पैक किन लीते
2: जहिया फैन जहां फैन पैक खरीद करी ओ 20% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश फिर तक ले लीते कैश फिर तक ले लीते
2: एंसल पैक किन लीते शर्त लागू हुई एंसल नेपाल के लग
3: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
4: मैं नहीं जाऊं वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल थू
3: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
4: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
5: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठा तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
6: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600 71024 98046 77417।

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछ से शुरू करल मने घर सिर्जा सेकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना कटा सुगुर बनेल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफी ओस्ट बनी हो ना वट्र फिर पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ रख घूम जाए तो था पाए
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436।
3: दाजु हेर्नुहोस् न भाउजूलाई बिरामले च्याप्दै गइराखेको छ तपाईँ भने यहाँ कुनै मतलबै नगरी बसिराख्नु भएको छ भाउजूलाई कतै के भइहाल्यो भने रुनु होला पछि धुरु धुरु
4: के गरौँ त म यत्रो उपचार गरिसके कति ठाउँमा लगिसके तर निकै हुन्न
3: दाई बरु एकपटक टिकापुरको सत्कार मेडिकल सेवामा जचाउने हो कि के थाहा त्यहाँ उपचार भइहाल्छ कि
4: तैले भन्छस् भने लौ जान्न त त्यो सत्कार मेडिकलमा एकपटक
5: सत्कार मेडिकल सेवाका खास सेवाहरू ओपिडी सेवा भिडियो एक्सरे सेवा ल्याब अर्थात् प्रयोगशाला सेवा इसिजी सेवा मेडिकल सेवा इएनटी सेवा प्लास्टर सेवा बिरामी जाँच्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म डाक्टर हेमन्त स्वार टिकापुर ब्लक नम्बर 7 गोल पार्क नजिक गुम्बा रोड टिकापुर फोन नम्बर 091560095 मोबाइल नम्बर 98484273059।

0: कापी रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आज काकना हो बाबा फिर उस टपाटी गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बर थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई ठो कबू पेंसिल हेरा कई ठो कबू झोले फटा कई ठो बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिपठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कापी हरी थी ना कबू पेंसिल हरी थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटी ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।

तेरा महाराज इन्द्र लड़ाई करना को लागे अहिले वृत्रासुर को अगाडि कम्मर कसी सक्यो भन्ने शमन को कथा ये सत्यबाट महाराज परीक्षित अब यो श्रीमत भागवत महाप्राण कति कथा को वर्णन विस्तार गरिन्छ भने संकेतमान महाराज परीक्षित लाई सुखदेवले बताउनु भयो। लौतरीशेश्वर प्रणालीहरु अब यहाँलाई जुन श्रीमद भागवत को महिमा को वर्णन विस्तार को बारे में मैं शब्द प्रमाण कर राजा परीक्षित सुखदेव आज्ञा कर